0: किस झुके का नहीं समा।
1: रॉकस्टार बीएसपी लाइव, बाटा बे एरिया एंटरटेनमेंट्स एंड रियल्टर नाग